0: सर मेरा ड्रीम रहेगा कि मैं इंडिया से खेलूं एंड वर्ल्ड की सबसे बेस्ट ऑलराउंडर बनूं।
1: One way to fast track that dream is to get selected for India's Women's Premier League or WPL.
2: We are at a junior girls tournament where teams from across the country have come to play. But there's more at stake here than just this tournament, because here the girls are hoping that they'll be picked by some of the big Premier League teams, and the auction is just days away.
1: The WPL, in its fourth season, is already the richest women's cricket league in the world and the second most lucrative women's league in any sport globally. Tanisha's name is on the list from which clubs will bid for players in an auction. But this morning, her focus is on the match.
0: मैं नहीं सोच रही हूँ. It just ऐसा है कि अगर मेरा नाम आएगा, मुझे तब भी मेहनत करनी है, और मेरा नाम नहीं भी आएगा, मुझे तब भी मेहनत करनी है.
1: It was Tanisha's father who introduced her to cricket.
0: मैं 9-10 साल की थी और मैंने पापा की वजह से क्रिकेट खेलना स्टार्ट किया था. हम घर में कज़न्स, ये सब बहुत सारे कज़न्स थे, तो हम गली में क्रिकेट खेलते थे, फुटबॉल खेलते थे, तो तब से शौक आ गया था क्रिकेट खेलने का.
1: But she soon realized it was rare for girls to play.
0: और कोई लड़की नहीं थी, जस्ट मैं ही थी एंड लड़कों के साथ खेलती थी. बेसिकली एक टूर्नामेंट हुआ था सर, और वहाँ पे कोई लड़की अलाउड नहीं थी, बट मेरे सर थे पंकज सर, वो स्कूल में ट्रेन करते थे मुझे बॉलिंग का ही, तो उनकी वजह से मैं वो टूर्नामेंट खेली थी एंड मैंने बहुत अच्छी फील्डिंग करी थी, उस वजह से मुझे एक अवार्ड मिला था. मुझे ऐसा फील होता था कि लड़कियों की टीम ही नहीं है. मैचेस भी देखे हैं तो लड़कों के ही मैचेस देखे हैं, वो विराट कोहली के, सचिन तेंदुलकर के, बट जितना मैं खेलती रही मुझे पता चला कि हाँ लड़कियाँ भी खेलती है, तो तब पता चला कि हाँ यार लड़कियाँ भी स्विंग करती है बॉल, स्पिन करती है बॉल.
3: सुबह बात हुई थी ना, वैसे शॉट खेल दिया, अभी भी मैंने देखा.
1: It was only when she started playing for Delhi's under 16 team that Tanisha found herself batting and bowling alongside other girls. But things were much bleaker for her coach Latika Kumari. When Latika played for the national team, she was only paid a token amount and the matches were few and far between.
4: ऐसे चलेगा, इसको ऐसे नहीं चलाना.
5: हम सीधा कर रहे
4: हैं. इधर नहीं चला. हां, तुम लोग इधर खेलो.
6: क्योंकि इंटरनेशनल इवेंट्स भी बहुत रेयर होते थे, सिर्फ वर्ल्ड कप टू वर्ल्ड कप होता था, बीच में एक दो सीरीज हो गई तो हो गई. वी यूज टू स्टे इन वन हॉल, लाइक 5-6 टीम्स एंड यूजिंग 2-3 वॉशरूम्स, एंड खाने का भी इतना हाइजीनिक नहीं रहता था. हम लोग अपनी बेडिंग खुद लेके जाते थे, किडबैक को पिलो की तरह यूज करके फर्श पे ही सो रहे हैं. नाउ दीज डेज मोर प्रोफेशनल लेवल पे सारी चीज़ें हो रही हैं, कोचिज बोल लो आप, एसेंसीज हैं, फिजियोज हैं, तो स्टेडियम्स में आ रहे हैं, प्यार दे रहे हैं, और टीवीज पे हम, टीवी वगैरह पे हम लोग आ रहे हैं, जो कि सपना ही था हमारे लिए कि हम कभी दिखेंगे कि नहीं दिखेंगे.
2: Do you ever wish that you are a young cricketer right now?
6: Of course, why not? Because वो dream तब भी था, हम लोग ने represent किया country को, but आज के time में अगर हम लोग होते तो मे भी हम भी कह सकते हैं कि लोगों को दिख रहे होते अभी.
1: Sneh Rana is a player who has seen both worlds. She made her debut for the Indian team in 2014 and has toiled in anonymity for most of her career. But winning the 2025 World Cup has transformed her into a household name.
7: Hello.
2: Hello. So nice to meet you.
7: Thank
2: and congratulations
7: you.
2: On the World Cup win.
7: Thank you so much.
2: So excited to be here with you.
7: Thank you so much. Welcome, welcome.
2: This is your house? This is where
7: yes,
2: you grew up?
7: Yes, yes.
2: Okay.
7: This is our village, Sinola.
2: Okay.
7: Here I grew up. I have a joint family, as you can see.
2: Okay. And everybody's playing cricket.
7: Yes. They are very fond of cricket. See there, little master.
2: Little master. Perfect. With a very small bat.
7: Yeah.
1: We meet Snehe on a rare break at her home in Dehradun, a city in the foothills of the Himalayas.
2: Of course, winning the World Cup is the pinnacle of anybody's cricketing career. But personally, what does it mean for you to lift that cup?
7: It was a very huge and special moment because all this time we have prepared for that thing and we have dreamt of lifting the World Cup trophy since many years. Lifting that trophy, it means the world to us. Yes. See, it will definitely bring a huge change in women's cricket. Moreover, the perspective of people and those parents who think that there's no career in cricket, I think the mindset will change. I think many parents will give freedom to their girl child to take up the sport.
1: Though she received nothing but encouragement from her family to follow her dreams, the story of Sneha's beginnings in cricket has a familiar ring.
7: तो हमारी बहुत बड़ी फैमिली है और सिक्स फैमिलीज टुगेदर और हम लोग बहुत सारे कजिन्स थे और यही ग्राउंड पे हम लोग खेलते थे वी हैड अ ग्राउंड नियर बाय अर्लियर और तो हम वहाँ पे टूर्नामेंट्स खेलते थे आपस में एंड आई वाज द ओनली गर्ल बाय द वे अकेडमी थी लिटिल मास्टर तो वो खेलने के लिए आए थे यहाँ पे मैच और उनका मैच हमारे गांव के जो 11 होती है उनके साथ था एंड आफ्टर दैट मैच उन्होंने जो हमारे टीम थी तो उन्होंने बोला कि हमारे गांव में एक लड़की है और वो बहुत अच्छा क्रिकेट खेलती है आप उसको प्लीज़ देख लीजिए एंड बाय द वे आई वाज वेरी इंट्रोवर्ट दैट टाइम तो मैं वहाँ पर पास में एक पेड़ था और मैं उसके पीछे जाके छुप गई सो आई वॉज लाइक कि नो आई डोंट वॉन्ट टू प्ले ये ऐसे ही बोल रहे हैं सो दे वर लाइक कि नो कम एंड एक बॉल थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेके आई अपने अंदर एंड देन आई वेंट एंड आई बोल्ड वन ओवर एंड विकेट भी ली थी मैंने उसमें और एंड आई प्लेड वन ओवर सी बीइंग अ वुमेन क्रिकेटर आई थिंक एवरी फेस पे चैलेंज है पहले तो घर से बाहर निकलने का वो बैरियर था सेकंड था आप क्रिकेट खेल रहे हो बिकॉज उस टाइम पे सब बोलते थे ये बॉयज़ का गेम है यू कांट प्ले क्रिकेट प्रोफेशनली तो बिल्कुल भी नहीं सो माय पेरेंट्स हैव हर्ड ऑल दोज क्रैप्स
1: इवन अ स्नेहस टैलेंट टुक हर हायर एंड हायर एंड इनटू द नेशनल टीम हर स्ट्रगल्स कंटिन्यूड
7: सी पहले पैसा बहुत कम था वेमेंस क्रिकेट में अगर मैं बात करूँ डोमेस्टिक की तो इट वाज लाइक अराउंड 1200 रुपीज़ पर मैच इट वाज वेरी डिफिकल्ट टू मेक करियर
1: थिंग्स स्टार्टेड टू चेंज व्हेन द इंडियन वुमेन्स टीम अगेंस्ट ऑल एक्सपेक्टेशंस रीच्ड द फाइनल ऑफ द 2017 वर्ल्ड कप फोर्सिंग पीपल टू नोटिस देम The next big change came with the Women's Premier League in 2023, followed by the World Cup win 2 years later. In 2022, the sports governing body announced equal pay for international matches. This was expanded to domestic games after the 2025 World Cup win. But with fewer matches scheduled for women, men can still earn up to 10 times more.
7: पहले फ्री टिकट्स होते थे विमेंस मैचेस के लिए बट नोबडी रियली शोड अप नाउ स्टेडियम्स आर फुल वी सी दे आर लिटरली फाइटिंग फॉर द टिकट्स
1: एट द एकेडमी वेयर स्नेह स्टार्टेड हर जर्नी अ यंग गर्ल इज लर्निंग द बेसिक्स ऑफ द गेम वेदिका हु इज 6 इज फॉलोइंग इन द फुटस्टेप्स ऑफ हर ब्रदर शौर्य
5: अगेन कवर ड्राइव करेंगी उधर जाओ कवर ड्राइव नाइस शॉट शाबाश शाबाश थोड़ा
8: बॉलर को देखे सामने और अपना फुटवर्क इस्तेमाल करके सीधे स्ट्रेट ड्राइव करेंगे आप ठीक है ना ओके स्ट्रेट ड्राइव ब्यूटीफुल शाबाश अभी कवर ड्राइव करेंगे
1: व्हेन ट्रेनिंग एंड्स देयर फादर कम्स टू पिक देम अप एंड इनवाइट्स अस बैक टू द फैमिलीज होम
9: कुछ खाना है लो ले लो बिस्किट वगैरह लो
10: मेरा फेवरेट प्लेयर
11: स्नेहा
10: राणा है क्या सिखाती है मतलब जैसे जब ये बैटिंग करती है जब मैं बोलता हूँ सीधे करिए बैट इसका पीछे जाता है क्या जी मैं सही डाल दी अगर सर मेरे को टोकेंगे तो मैं तो तब सही करूंगी
1: द सिबलिंग्स फादर विमल राजपूत वांटेड हिज सन टू लर्न क्रिकेट एंड एनरोल्ड हिम एट द एकेडमी
12: वेदिका का ऐसा हुआ इसको छोड़ने गया साथ में मैं बोलूँगी इसको भी यहीं छोड़ दे मैं नहीं मैम नहीं छोड़ पाऊँगा मैं तो मैंने मैम आपको परेशान कर देगी कि नहीं मैं बोल रही हूँ मैं इसको संभाल लूँगी, हैंडल कर लूँगी। बस डरते डरते छोड़ा। आज ये है कि तुरंत जाते हैं ये क्रिकेट के नाम से, स्कूल से आएंगे अपना फटाफट काम करना सब करना और क्रिकेट जाना है।
11: तो जिस टाइम पे हमारा कॉलेज है स्कूल का टाइम था, उस टाइम तो अपॉर्चुनिटीज़ में इतना नाम सुना ही नहीं था कि वुमेंस का क्रिकेट होता है। एक्चुअली